और उनमें ऐसे भी हैं जिन्होंने इस गरज से मस्जिद बनाई है कि जरर पहुंचाएं और कुफ्र करें और मोमिनों में तफरका डालें। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से इससे पहले जंग कर चुके हैं उनके लिए घात की जगह बनाएं और कसमें खाएंगे कि हमारा मकसूद तो सिर्फ भलाई था मगर अल्लाह गवाही देता है कि ये झूठे हैं। तुम उस मस्जिद में कभी जाकर खड़े भी ना होना, अलबत्ता वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले दिन से तकवा पर रखी गई है इस काबिल है कि उसमें जाया और नमाज पढ़ाया करो। उसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहने को पसंद करते हैं और अल्लाह पाक रहने वालों को पसंद करता है। भला जिस शख्स ने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह के खौफ और उसकी रजामंदी पर रखी वो अच्छा है या वो जिसने अपनी इमारत की बुनियाद एक खाई के गिरने वाले किनारे पर रखी फिर वो उसको दोजख की आग में ले गिरा। और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। ये इमारत जो उन्होंने बनाई है हमेशा उनके दिलों में मूजिबे तरद्दुद रहेगी मगर ये कि उनके दिल पाश पाश हो जाएं। और अल्लाह जानने वाला है हिकमत वाला है।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

सुनते हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे त जेको आहे सो असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि उनमें इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे हाई रिस्क हूंदा आहिनि उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी पर रेशो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें
2: अजरक के रंगों से रंगी
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

अच्छी हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: Angara.
1: क्यों ऐसे ही है, तो ऐसे ही आप लोग भी मेरा वेट कर रहे होते हैं, आप लोग भी मेरे पास मुझसे बात करने के लिए आते हैं, तो बहुत दिल से खुशी होती है। तो ऐसे ही आप रहें मेरे साथ पूरे पूरे 2 घंटे के लिए, जैसा कि साथ है हमारा। तो अभी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हम सुनेंगे सॉन्ग जो कि होगा फैजल की आवाज़ में। अगर किसी को कोई फरमाइशी सॉन्ग है तो मेरे सवाल का जवाब दे दिए और अपने पसंदीदा सॉन्ग का नाम बता दे और मजे मजे के सॉन्ग को एंजॉय करें हमारे साथ। अकेले के लिए क्या सॉन्ग सुनने का मजा जब तक हमारे साथ आप लोग ना सुने भाई। तो यहाँ पर मैं सॉन्ग करूंगी एक प्ले। आपको पता है कि कोई भी सॉन्ग होता है तो मैं अकेले नहीं सुनती, हमेशा आप लोगों के साथ सुनती हूँ, तो आज भी ऐसा ही होने वाला है।

अच्छा फैजल की आवाज में जो इतने सारे सॉन्ग्स हैं और समझ नहीं आता बंदा प्ले कौन सा करे, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं, तो आज एक इनका न्यू सॉन्ग भी हम लगा लेते हैं. सुना तो ये हम लोगों ने शायद नहीं है या सुना है, खैर मैं तो हमेशा कोई भी न्यू सॉन्ग होता है हमेशा मेरे लिए आप लोगों के साथ ही सुन रही होती हूँ. तो ऐसे ही है, आज भी एक सॉन्ग इनका मैंने प्ले किया है, तो आपके साथ सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, साथ में ये सॉन्ग रहेगा मेरे साथ.

ओडी में से वो कौन सा हिस्सा जो हर दो महीने बाद तब्दील होता है, तो जाइए और पता लगाइए जाके। नकल तो आपने करनी नहीं, क्योंकि नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है, वो आप लोगों के पास बिल्कुल नहीं है, मुझे पता है, और इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ। और इसके साथ साथ देखते हैं अभी हमारे पास और कौन मौजूद हैं, क्योंकि फिर आप लोग लेट हो जाते हैं, फिर आप लोग टाइमली जवाब नहीं देते, आपके सॉन्ग्स रह जाते हैं, तो जाएं और जाके जवाब दें और अपने सॉन्ग को एंजॉय करवाएं, खुद भी करें और हमें भी करवाएं। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रजाक, कहते हैं हम अपनी वतन मौके पे आपने क्या लिखना चाहा है, हम अपनी वतन मौके पे वतनी अजीज पाकिस्तान जश्न आज़ादी के मुबारकबाद पेश करते हैं। मुंजाने मोहम्मद खान कंबार हार्री पॉटर साहब से थैंक यू सो मच मोहम्मद अब्दुल रजाक। और इसके अलावा कहते हैं कि मोहम्मद खान कंबार और वफा जम्बाल कंबार, एजाज कंबार, हार्री पॉटर स्टार नजत मीरपुर खास से शो इंजॉय करें। ओके, आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप मुझे अपना बताएं, हम लोग तो कर ही रहे हैं भाई। और इसके साथ

0: अच्छा, और इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे साथ मौजूद है नज़ीर खुसो. नज़ीर खुसो हमारे साथ मौजूद हैं और साथ में कहते हैं कि अगर इंसान पर, अगर इंसानों पर गुजरने वाली कैफियत उनके दिल के बजाय उनके माथे पर लिखी होती तो तुम्हें उन लोगों पर रहम आता जिनसे तुम हसद करते हो. बेशक बिल्कुल ऐसा ही है. हमारे दिलों का हाल तो अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता. तो लोग समझ रहे होते हैं कि हर इंसान जो है ना बहुत खुश है. चलो ठीक है, वो किसी को तकलीफ नहीं देता होगा, वो खुश भी होगा, लेकिन अंदर से वो उसके हाल क्या है दिल का. आप लोग अगर ये जाना शुरू कर दें तो उससे हसद करने से बेहतर आप पहले ही अपने आप को जो है ना समझा लेंगे कि नहीं यार हम इससे हसद क्यों कर रहे हैं. बिल्कुल ऐसा ही. बहुत अच्छा आपने कोर्स भेजा है नज़ीर खुसो. और साथ में कहते हैं सोबत पर बलोचिस्तान से वो ज्वाइन करते हैं हमें. तो थैंक यू फॉर नज़ीर खुसो कि आपने हमें सोबत पर बलोचिस्तान से हमें ज्वाइन किया. ऐसे आप हमें ज्वाइन करते रहकर हर इतवार मेरा और रहता है आपका साथ पूरे पूरे दो घंटे के लिए सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक. और जैसा कि अब यहाँ पर टाइम हो जाता है हमारे पास छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाने का. जैसे ही ब्रेक पर जाएंगे वापस आएंगे, वापस आके करेंगे बाकी की बातें. जब तक रहिएगा मेरे साथ और रखिएगा अपना ख्याल. लेकिन मैं इससे पहले आपको बताती जाऊँ कि मेरे जो सवाल है, सवाल जिसने अभी तक मेरा नहीं सुना, सवाल मैं रिपीट करते जा रही हूँ, देन हम जाएंगे ब्रेक पे. तो सवाल मेरा ये है आप लोगों से कि आपने मुझे बताना है कि भाई वो ऐसी हमारी बॉडी की ऐसी कौन सी चीज है जो 2 महीने बाद तब्दील होती है. तो पता लगाइए, कोई मुश्किल काम नहीं है. मैं भी इधर ही हूँ, आप भी इधर ही हैं. और नकल तो बिल्कुल नहीं करिएगा, वही बात की अकल भी चाहिए तो वो आप लोगों के पास नहीं है. तो बहुत सारे लोग अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन थोड़ी देर में हम आकर देखेंगे. अभी यहाँ पर टाइम होता है हमारे पास एक छोटा सा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाने का. ब्रेक पे जाएंगे, जैसे ही वापस आएंगे तो फिर भी हमारे पास 15 मिनट होंगे आपके से जवाब लेने का. तो सही है, अभी चलते हैं ब्रेक पे और चाय शाय पीजिए, सुबह का नाश्ता कीजिए. अकेले अकेले मुझे तो आपने याद ही नहीं किया. तो चलते हैं ब्रेक पे, आते हैं वापस.
1: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by. अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: जीए सखर FM 88,
3: सखर की आवाज.
4: अगर खूबसूरती खपे त आर्ट्स अपनायो. आर्ट्स ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा एवोकाडो अवहां जी सेंसिटिव स्किन के अंदर.

0: सुना था हमने मसरूर अहमद की फरमाइश पे और यकीन उनका जवाब बिल्कुल
1: ॾेई छॾियो. गॾियल बयान में चयो वियो आहे त तालिबान रजीम में अफ़गाननि खे इंसानी हक़नि, इमदाद, मैशियत ऐं सलामती बाबति चैलेंजिस आहिनि. इहा सूरतहाल पाड़ेसरी मुल्कनि समेत पूरे खिते जे इस्तेहकाम ऐं सलामती लाइ ख़तरो पैदा करे रही आहे.

0: Citizen Housing Scheme Sakhar.
1: तमाम से महफूज मुस्तकबिल ऐं बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जो बेहतरीन इंतखाब
2: अवां जे पंहिंजे शहर सखर ऐं रोड़ी में
1: जिना हस्पताल कराची जो तरबियती आफ्ता
2: ऐं टीबी हस्पताल खैरपुर जो मशहूर
1: एलर्जी दमो टीबी फिफड़न ऐं छातीअ जे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जो माहिर
2: डॉक्टर मोहम्मद नासिर सूमरो
1: चेस्ट स्पेशलिस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट
2: माहिर अमराज
1: फिफड़न में ॻाढ़ो फिफड़न में पाणी ऐं फिफड़न में हवा भरजण
2: टीबी नमूनिया

अच्छा इसके बाद मैं सॉन्ग चलाऊंगी जो कि अपनी पसंद का होगा मेरी, और इसके बाद मैं चाहूंगी कि आप लोगों में से कोई एक फरमाइश करे सॉन्ग की, जो कि मैं उनकी फरमाइश पे एक सॉन्ग चलाऊं। अभी मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने पसंद का एक सॉन्ग चलाऊं फैज़ अली की आवाज़ में शीशे का दिल, क्योंकि मतलब एक ऐसे ऐसे सॉन्ग सुनने का दिल चाह रहा होता है ऐसे सुबह सुबह का टाइम है, तो क्यों ना कोई अच्छे अच्छे उदम उदम वाले सॉन्ग सुने आपके साथ और आप लोग भी मेरे साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है साथ में। और जैसा कि आपको पता है जिसने जब भी ज्वाइन किया है मेरा शो, जिसने मेरा सवाल नहीं सुन पाया था, खैर है कोई बात ही, मेरे पास एक सवाल था यार, मैं सवाल आप लोगों से क्यों पूछूं जब आप लोग मुझे जवाब ही नहीं दे रहे होते, नाराज कर देते हैं, आप लोग मनाते भी नहीं हो कि यार ठीक है हम लोग मैडम को जवाब दे दें, आरजे को जवाब दे दें, लेकिन नहीं आप लोगों को समझ ही होती है कि भाई पता नहीं क्या है और जवाब देंगे गलत ना हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग कम से कम कमेंट करने की लिस्ट में तो शामिल हो जाया करें, आप लोगों से तो वो भी नहीं हुआ चाहता, अब मैं क्या ही आप लोगों को बोलूँ।

सोई को सॉन्ग है जो हमने प्ले कर दिया है, और सुनते हैं सॉन्ग मिलके शीशे का दिल बाय फैजाली। तो सुनेंगे और सोई का साथ में, और पूछूंगी मैं आप लोगों से ये सॉन्ग कैसा लगा आपको।

0: तुझे पसंद रही थी फैजल की आवाज में सॉन्ग शीशे का दा दिल मेरा। तो जी अब क्या करें जब टूट गया, और इन लोगों में से आपके दिल तो सलामत है ना भाई, ये तो बता दें। और इसके अलावा ये बताएं कि कौन सा सॉन्ग आपने मेरे साथ आज सुने हैं, कौन सा सॉन्ग सुनना चाहेंगे, कौन सा सॉन्ग की फरमाइश करना चाहेंगे। तो चले ठीक है, अभी कोई सवाल नहीं है, कोई आपके पास क्वेश्चन नहीं है, आप लोग मुझे वैसे पसंदीदा सॉन्ग बता दें आज की। ऑफर आपके पास बार बार नहीं मिलेगी जो मैंने आज आपको ऑफर दी है। चले बिना सॉन्ग बिना क्वेश्चन के आपको सॉन्ग का नाम बता दें जी, तो कोई सेगमेंट विन करने वाला कोई चक्कर नहीं होगा, अपने पसंदीदा सॉन्ग बता दें। और आज सुने आज़ादी के दिन, तो अपनी मर्जी के सॉन्ग। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर टाइम हो जाता है वहाँ पर एक छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाने का, जैसे ही जाएंगे वैसे ही वापस आएंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं जैसे ही ब्रेक पर जाती हूँ और वैसे ही वापस हम लोग आ जाते हैं आप लोगों से बात करने के लिए। तो अभी भी सेम ऐसे ही होने वाला है, तो अभी चलते हैं यहाँ पर हम एक छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ। और टाइम हो जाता है टाइम चेक का, तो वापस आएंगे, वापस आके करेंगे बाकी की बातें। रहिएगा मेरे साथ, चाय का उठाएं कप और अकेले अकेले एंजॉय करें चाय को।
1: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by. अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए। आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्श ब्यूटी क्रीम।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
3: अगर खूबसूरती खपे द आर्ट्स अपनायो। आर्ट्स ब्यूटी क्रीम एलोवेरा एवोकाडो अवहां जी सेंसिटिव स्किन के अंदर खा रिपेयर करे सिर्फ 3 दिन में। डार्क स्पॉट्स, एक्नी ए स्कार्स घटाए, स्किन के बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग ए शानदार मिरेकल ग्लो, कुदरती चमक ए निखार जो बेहतरीन इंतखाब। आर्ट्स ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट बाय आगास इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड।
4: क्या आप अपना पैगाम हजारों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? चाहे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स हो, किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक, बिजनेस के प्रमोशन, जॉब वैकेंसीज, पब्लिक अनाउंसमेंट्स, इवेंट्स, सेमिनार्स, स्पेशल ऑफर्स, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स, लाइव मेंशंस और कस्टमाइज्ड प्रमोशनल कैंपेन्स या किसी भी किस्म के एडवर्टाइजिंग कैंपेन, GFM है आपका भरोसेमंद मीडिया पार्टनर। अपनी एडवर्टाइजिंग को दीजिए ज्यादा रीच, बेहतर इम्पैक्ट और मौसर नतीजे। एडवर्टाइजिंग और बुकिंग के लिए आज ही राब्ता करें स्टेशन मैनेजर बाबर शेख 03009319667।
5: छा तवा में पैंजो ख्वाबन जो घर एक अहड़ी जाए ते ठहण चाहियो था जिते हुजे तहफुज जदीद सहूलियतूं ऐं मंजूर थियल सिक्योरिटी।
4: तपोई भली कार हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर में,
5: सखर शिकारपुर रोड ते,
4: डॉक्टर जियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जे बिल्कुल सामू,
5: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारा मंजूर थियल
4: एक शानदार ऐं काबिले एतमाद रिहायशी मनसूबो।
5: हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर,
4: रिहायशी प्लॉट 80, 120, 150 गज जा,
5: ऐं कारोबारी मौके लाइक कमर्शियल प्लॉट्स 50 गज एंड 600 गज।
4: हिते तमा के मिलन थियो जदीद सहूलतूं,
5: साफ मिठो पानी,
4: बिजली, गैस,
5: 24 कलाक सिक्योरिटी,
4: मस्जिद, पार्क, स्कूल, बाउंड्री वॉल आई सबका वडी गाल ही मंसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी वेजो आहे
5: जेको रिहायश आई सीड़पकारी बिनी लाइ बेहतरीन मौको बनाए थो।
4: अजी पेंजे प्लॉट जी बुकिंग करायो,
5: फौरी कब्जो आई फौरी रजिस्ट्री।
4: कॉन्टेक्ट
5: 03009317252
4: and 03132757860। Husaini Manzil Housing Scheme Sakhar.
5: Tamaje mehfooz mustaqbal aur behtareen investment jo behtareen intikhab.

0: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पीआरिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पीआरियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त हिन जो आसान जवाबु इहो आहे, हीउ ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नेमत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल लायल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्द मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: जिंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है और वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चा की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
4: सिंध के माथे का झूमर
5: GFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पीआरिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पीआरियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त हिन जो आसान जवाबु इहो आहे, हीउ ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नेमत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। हीउ पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे हीउ बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात। सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

गुरुजी अदल सतार भयो चवे। शामराद मिदरी खा फरमाश ऐं दिलमुराद मिदरी खा फरमाश ऐं मुदसर मिदरी शहर सिबिका।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्द मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: सिंध के माथे का झूमर।
1: GFM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: शहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चा की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हेलो
1: हे नायल, आर यू फ्री? कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं कह रहे थे ना?
0: नहीं नहीं, तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, बोलो।
1: असल में मुझे अपनी दोस्त के घर से नोट्स पिक करने हैं। कैन यू प्लीज टेक मी देयर?
0: हाँ, तुम बस रेडी हो जाओ, मैं आ रहा
1: हूँ। यू आर द स्वीटेस्ट पर्सन आई नो।
0: सी यू।
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहो बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर जो सबबु न बणंदो।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
3: सुनते रहो GFM 90.8।

अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पीआरिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पीआरियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त हिन जो आसान जवाबु इहो आहे, हीउ ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे हीउ बूस्टर जी इज़ाफ़ी ख़ुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।

0: जो शहर बहजो घर सकरण आए सकरण जो आवाज
1: GFM 90.8।
2: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
3: सिंध के माथे का झूमर
4: GFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चा की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1116 पे।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत। सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
1: अक्सर मान जो सवाल हों असा सही पोलियो की वैक्सीन दहन साल चौथी डी वे तो असके बार अक्सर कमजोर आन उनमें इम्यूनिटी तमाम घट हूँ हाई रिस्क हूँ उन असानी एरिया हाई रिस्क का ओवरऑल पूरा सूबो पूरा पाकिस्तान तेज कर वैक्सीन के लिए उम्र की हद को कें जगह वैक्सीन कें भी उम्र से पोलियो लगी सके तो कें उम्र से वैक्सीन कर सके पर रेशो दहन साल का घट आ ते अस रिक्वेस्ट है सभी के बूस्टर डोज लगे।
2: हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो GFM 90.8।
0: जो शहर बहजो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
1: GFM 90.8।

0: पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
0: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
0: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
2: GFM 88
1: नेटवर्क,
0: सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे त जेको आहे सो असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि उनमें इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे हाई रिस्क हूंदा आहिनि उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज लॻाए
1: हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो GFM 90.8।
0: जो शहर जो घर सकरण आई सकरण जो आवाज
1: GFM 90.8।

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो GFM 90.8।
2: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरत हाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
3: अस्सलाम वालेकुम सामईन, तां बुधो पिया GFM नेटवर्क सिंध राउंड अप संगदे मां गुलाब खान बेण।

सिंध राउंड अप में अज अवां बुधी सकदा केटी बंदर के बंदरगाह मुआशी राहदारी शाह बंदर के माहीगीरी बंदर में बदलाने जो फैसलो 4000 एकड़ जमीन भी मुख्तसर सिंध से 1947 का फरार थे कंखे जिम्मेवार था समझो अयाज लतीश पलीजो खां नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जा उन्हीं सवाल है सिंध के 45 टीएमसी में सूबाई वफाकी आफिसर के म्यूनसिपल कमिश्नर मुकर करने की तैयारियों थखर जेल में कैदी फरार सवा साल बाद रिपोर्ट पदरी डिप्टी सुपरिटेंडेंट सूदो 5 अहलकार जबरी रिटायर्ड 4 बर्तन

0: ऐं पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। सिंध जे तालीम खाते तरफ़ां तालीमी इदारनि जे औकात कार में तब्दीली, मोकल जो वक़्तु 2:30 वॻे मुक़ररु करणु ऐं छंछरु जी मोकल बाबति कयल फ़ैसिलनि ते मुख़्तलिफ़ सवाल उभिरी रहिया आहिनि। इंतिज़ामी तौर ते हीउ फ़ैसिलो सादो नज़र अचे थो, पर उन जा सिधा असर शागिर्दनि, उस्तादनि ऐं वालदेन ते पवंदा। तालीमी पॉलिसी ठाहिण वक़्तु सभ खां अहम ॻाल्हि ज़मीनी हक़ीक़तुनि खे नज़र में रखणु आहे। सिंध जे केतिरनि ई सरकारी स्कूलनि में अॼु बि पीअण जे साफ़ पाणी, बिजली, मुनासिब वॉशरूम, फर्नीचर ऐं ॿियनि बुनियादी सहूलियतुनि जी खोट मौजूदु आहे। अहिड़ी सूरत हाल में सिर्फ़ स्कूल में ॿारनि जी मौजूदगीअ जो वक़्तु वधाइण सां तालीम जो मयार बहितर नथो थी सघे। ख़ासि तौर ते सिंध जे सख़्तु उन्हारे खे नज़र में रखणु ज़रूरी आहे। जेकॾहिं क्लासरूम में मुनासिब हवा, बिजली ऐं पीअण जो पाणी मौजूदु न हुजे त नंढनि ॿारनि खे ड्रिघे वक़्त ताईं स्कूल में विहारणु संदनि सिख्या बदिरां जिस्मानी तकलीफ़ जो सबबु बणिजी सघे थो। ॿारनि जी उमिरि, सिहत, ज़हनी कैफ़ियत ऐं सिख्या जी सलाहियत खे बि तालीमी पॉलिसीअ जो हिसो बनाइणु घुरिजे। हिकु ॿियो उहो सवाल मुशावरत जो आहे। स्कूलनि जी औकात में तब्दीली जहिड़ा फ़ैसिला करण खां अॻु उस्ताद तनज़ीमुनि, वालदेन, तालीमी माहिरनि ऐं स्कूल इंतिज़ामिया सां मुशावरत कई वञे त अमली मसला अॻु ई साम्हूं अची सघनि था। पॉलिसी जॾहिं सिर्फ़ु आफ़िसुनि में वेही तयारु कई वञे ऐं स्कूलनि जे हक़ीक़ी सूरत हाल खे नज़रअंदाज़ कयो वञे त उन जा नतीजा मसलनि जी सूरत हाल में ज़ाहिर थियण जो इम्कान वधी वञे थो। तालीम खाते जे लाइ ज़रूरी आहे त वक़्तु वधाइण या औकातकार तब्दील करण खां अॻु स्कूलनि जी बुनियादी सहूलियतुनि जो जाइज़ो वठे। जिन इदारनि में पाणी, बिजली, वॉशरूम्स, फर्नीचर ऐं महफ़ूज़ तालीमी माहौल मौजूदु नाहे, उते पहिरियां उहे सहूलियतूं फराहम करणु घुरिजनि। बहितर तालीम जो मयार सिर्फ़ स्कूल में गुज़ारियल कलाकनि सां न पर बहितर माहौल, मयारी तदरीस, बुनियादी सहूलियतुनि ऐं मुयसर इंतज़ाम सां हासिलु थींदो आहे। तंहिं करे तालीम खाते खे पंहिंजे नई औकातकार वारे फ़ैसिले ते ॿीहर गौर करणु, लाॻापियल धुरियुनि सां मुशावरत करणु ऐं ज़मीनी हक़ीक़तुनि खे साम्हूं रखे पॉलिसी जोड़णु घुरिजे। ॿारनि खे वधीक वक़्तु स्कूल में रखण खां अॻु खेनि सिखण जे लाइ मुनासिब माहौल फराहम करणु ई तालीम जे हक़ीक़ी बहितरी तरफ़ क़दम हूंदो। हिन वक़्त ताईं जो सिंध राउंडअप, ॿिए आचर जे सिंध राउंडअप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।
1: पंहिंजो शहर, पंहिंजो घर, सकरंट ऐं सकरंट जो आवाज़
2: GFM 90.8।
3: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पियारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पियारियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त हिन जो आसान जवाबु इहो आहे, ही ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइण लाज़मी आहे।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: GFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
0: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
0: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सुनती हो तो आवाज भी सुनती है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज। GFM 88 नेटवर्क,
0: सिंध की आवाज।

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो GFM 90.8।
2: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरत हाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
3: अस्सलाम वालेकुम सामेईन, तां बुधो पिया GFM नेटवर्क सिंध राउंड अप संगदे, मां गुलाब खान बेणा।

सिंध राउंड अप में अज अवां बुधी सकदा। केटी बंदर के बंदरगाह मुआशी राहदारी, शाह बंदर के माहीगीरी बंदर में बदलाने जो फैसलो, 4000 एकड़ जमीन भी मुख्तसर। सिंध से 1947 का फरार थो, कंखे जिम्मेवार था समझो। अयाज लतीश पलीजो खां नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन।

0: ऐं पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। सिंध जे तालीम खाते तरफ़ां तालीमी इदारनि जे औकात कार में तब्दीली, मोकल जो वक़्तु 2:30 वॻे मुक़ररु करणु ऐं छंछर जी मोकल बाबति कयल फ़ैसिलनि ते मुख़्तलिफ़ सवाल उभिरी रहिया आहिनि। इंतिज़ामी तौर ते हीउ फ़ैसिलो सादो नज़र अचे थो, पर उन जा सिधा असर शागिर्दनि, उस्तादनि ऐं वालदेन ते पवंदा। तालीमी पॉलिसी ठाहिण वक़्तु सभ खां अहम ॻाल्हि ज़मीनी हक़ीक़तुनि खे नज़र में रखणु आहे। सिंध जे केतिरनि ई सरकारी स्कूलनि में अॼु बि पीअण जे साफ़ पाणी, बिजली, मुनासिब वॉशरूम, फर्नीचर ऐं ॿियनि बुनियादी सहूलियतुनि जी खोट मौजूदु आहे। अहिड़ी सूरत हाल में सिर्फ़ स्कूल में ॿारनि जी मौजूदगीअ जो वक़्तु वधाइण सां तालीम जो मयारु बहितरु नथो थी सघे। ख़ासि तौर ते सिंध जे सख़्तु उन्हारे खे नज़र में रखणु ज़रूरी आहे। जेकॾहिं क्लासरूम में मुनासिब हवा, बिजली ऐं पीअण जो पाणी मौजूदु न हुजे त नंढनि ॿारनि खे ढिघे वक़्त ताईं स्कूल में विहारणु संदनि सिखिया बदिरां जिस्मानी तकलीफ़ जो सबबु बणिजी सघे थो। ॿारनि जी उमिरि, सिहत, ذہنی کیفیت ऐं सिखिया जी सलाहियत खे बि तालीमी पॉलिसीअ जो हिसो बनाइणु घुरिजे। हिकु ॿियो उहो सवाल मुशावरत जो आहे। स्कूलनि जी औकात में तब्दीली जहिड़ा फ़ैसिला करण खां अॻु उस्ताद तंज़ीमुनि, वालदेन, तालीमी माहिरनि ऐं स्कूल इंतिज़ामिया सां मुशावरत कई वञे त अमली मसला अॻु ई साम्हूं अची सघनि था। पॉलिसी जॾहिं सिर्फ़ु आफ़िसुनि में वेही तयारु कई वञे ऐं स्कूलनि जे हक़ीक़ी सूरत हाल खे नज़रअंदाज़ कयो वञे त उन जा नतीजा मसलनि जी सूरत हाल में ज़ाहिर थियण जो इम्कान वधी वञे थो। तालीम खाते जे लाइ ज़रूरी आहे त वक़्तु वधाइण या औकातकार तब्दील करण खां अॻु स्कूलनि जी बुनियादी सहूलियतुनि जो जाइज़ो वठे। जिन इदारनि में पाणी, बिजली, वॉशरूम्स, फर्नीचर ऐं महफ़ूज़ तालीमी माहौल मौजूदु नाहे, उते पहिरियां उहे सहूलियतूं फराहम करणु घुरिजनि। बहितर तालीम जो मयारु सिर्फ़ स्कूल में गुज़ारियल कलाकनि सां न पर बहितर माहौल, मयारी तदरीस, बुनियादी सहूलियतुनि ऐं मौसर इंतज़ाम सां हासिल थींदो आहे। तंहिं करे तालीम खाते खे पंहिंजे नई औकातकार वारे फ़ैसिले ते ॿीहर गौर करणु, लाॻापियल धुरियुनि सां मुशावरत करणु ऐं ज़मीनी हक़ीक़तुनि खे साम्हूं रखे पॉलिसी जोड़णु घुरिजे। ॿारनि खे वधीक वक़्तु स्कूल में रखण खां अॻु खेनि सिखण जे लाइ मुनासिब माहौल फराहम करण ई तालीम जी हक़ीक़ी बहितरी तरफ़ क़दम हूंदो। हिन वक़्त ताईं जो सिंध राउंडअप। ॿिए आचर जे सिंध राउंडअप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलह निगहबान।
1: जो शहर, जो घर, सकरंट, सकरंट जो आवाज
2: GFM 90.8
3: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा,
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: आप सुन रहे हैं
3: GFM 88
2: नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो जी FM 90.8।
2: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरत हाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GAFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
3: अस्सलाम वालेकुम सामईन, तां बुधो पिया GAFM नेटवर्क सिंध राउंड अप संगदे माया गुलाब खान बेणा।

सिंधराउंड अप में अज अवां बुधी सकदा केटी बंदर के बंदरगाह मुआशी राहदारी शाह बंदर के माहीगीरी बंदर में बदलाने जो फैसलो 4000 एकड़ जमीन भी मुख्तसर सिंध सा 1947 का फ्रॉड थो कंखे जिम्मेवार था समझो अयाज लतीश पलीजो खां नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जा 19 सवाल है। सिंध के 45 टीएमसी में सूबाई वफाकी आफिसर के म्यूनसिपल कमिश्नर मुकर करने की तैयारियों थखर जेल में कैदी फरार सवा साल बाद रिपोर्ट पदरी डिप्टी सुप्रिटेंडेंट सूदो 5 अहलकार जबरी रिटायर्ड चार बरतरफ गुड्स ट्रांसपोर्टर की हड़ताल 8 दिन में दाखिल आज सरकार से एक हिकानी वाली गाल स्पेशल रिपोर्ट में अवां बुधी सकंदा

तालीम खाते जा तदबर का खाली फैसला सहूलतुन बदरा स्कूल जा डिघा वक्त है। सिंध के वे वजीर सिद मुराद अली शाह सीड़प कारी खाते के हिदायत कई है तो शहीद बेनजीर भुट्टो के विजन मुताबिक केटी बंदर के तरक्की के लिए जामिया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल तैयार करे। वे वजीर तो केटी बंदर के जदीद ऊन्हे समुंड की पोर्ट डीप सी पोर्ट एक मरबूत इकतसादी कॉरिडोर से बधल वे बहरी इकतसादी तरक्की के मनसूबे में तब्दील किया वे। उन केटी बंदर के लिए एक जामिया काबिल अमल पीपी मॉडल की तजवीज़ चाहें तो मनसूबो सूबाई बजट में बयान कल विजन के मुताबिक तैयार किया वे जो सिंध के खिते के एक अहम बहरी लॉजिस्टिक्स सनती एनर्जी हब तौर बीहारे। वे वजीर लागापल खातन के हिदायत कई है तो तफसीली प्लानिंग कन पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सनती तरक्की लॉजिस्टिक्स माहिगीरी एनर्जी सहूलत सेहत से लागापल सीड़पकारी के शामिल कर मरहलेवार तरक्याती हिकमत अमली पेश कन। इन अमलदारन के हिदायत कई है केटी बंदर के मुस्तकबिल के एनर्जी गेट वे तौर तरक्की देने जा प्लान पिण शामिल कया वन तजवीज़ में आर एल एन जी एल एन जी एल पी जी की दरामदी सहूलत से गड बया स्ट्रेटजिक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करण से शामिल हैं। एक फिजिबिलिटी स्टडी अगमी तजवीज़ कल तरक्की के लिए तकरीबन 4000 एकड़ जमीन की सुजाणप कर चुकी है। मुराद शाह मददगार इंफ्रास्ट्रक्चर के तफसीली प्लानिंग जो पिण जैमें रोड रेल बहरी राबता शामिल हैं। मुराद अली शाह उन्हीं तरक्की से न सिर्फ कराची पोर्ट दबा घटबो पर पाकिस्तान के बहरी गुंजाइश में भी इजाफो थो माहिगिरी की बरामदाद के हथी मिली तवानाई की सिक्योरिटी मजबूत थी सनतकारी के हथी मिली ए रोजगार जहाँ वा मौके पैदा थन्दा। इन सीड़पकारी खाते की हिदायत कई तो वह एक तफसीली पीपीपी तजवीज़ तैयार कर इम्कानी सीड़पकारी तरक्याती भाईवारी की सुणप कर जल्द का जल्द एक जामिया अमल दरामद प्लान पेश कर जी मनसूबे के सूबाई बजट में कल वायदन के मुताबिक अगत सके। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कौमी अवामी तरीके के सरबराह अयाज लतीफ़ पलीचो के सवालनामा उमड़े छड़ा जैमें मजमू तौर 19 सवाल पुछा वह।

ऐं ते गौर शुरू करे छॾियो आहे। दरनि मूजिबि मकानी खाते जे अख़्तियारनि पारां अहिड़ियूं तजवीज़ूं पिणु तयारु कयूं वियूं आहिनि जेकी मुकमल तयारीअ सां सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन खाते जे अख़्तियारनि खां उमाइण बाद खोटा वधाइण जो मामिलो असेंबली में खयो वेंदो। दरनि मूजिबि म्यूनिसिपल कारपोरेशन्स में माली मामलनि जा मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते स्कैंडल साम्हूं अचण खां पोइ SCU जे ग्रुप जे ऑफिसरनि खे साइड लाइन करे सूबाई ऐं वफ़ाक़ी सर्विस जे ऑफिसरनि खे म्यूनिसिपल कमिश्नर तौरु मुक़ररु करण वारो फार्मूला अमल हेठि आंदो पियो वञे। हिन वक़्तु सिंध में वफ़ाक़ी ऐं सूबाई सर्विस जा रुॻो 2 ऑफिसर कराची में म्यूनिसिपल कमिश्नरनि तौरु मुक़ररु थियल आहिनि। सिंध हाई कोर्ट जी सूबाई सिलेक्शन कमेटी 13 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजनि जी 21 ग्रेड में तरक्कीअ जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। उन्हनि रसमी कानून वारे खाते पारां जारी नोटिफिकेशन मूजिबि गुलाम रुज़ा मेतलो, ज़ेबा खटक, शम्सुद्दीन जुणे जो, नियाज़ हुसैन, हफीज़ुर रहमान, अब्दुल सत्तार सूमरो, इलमुद्दीन अब्दुल हकीम, अमजद सूमरो, अल्ताफ़ हुसैन दायो, सोहराब बिरोही, शाहिद अली मेमण ऐं मोहम्मद जहांगीर खान खे तरक्की मिली। 15 महीना अॻु सखर सेंट्रल जेल मां कचे क़ैदी अमजद कुराई जे फरार थियण वारे मामिलो 1.25 साल खां पोइ इंक्वायरी रिपोर्ट पधरी। डिप्टी जेल सुप्रिटेंडेंट ऐं असिस्टेंट जेल सुप्रिटेंडेंट समेत 5 अहलकार जबरी रिटायर्ड। ASI ऐं 3 अहलकार बरतरफ़। जेल सुप्रिटेंडेंट समेत 3 अहलकारनि जी 5-5 सालनि जी इंक्रीमेंट ख़तम कई वई। जबरी रिटायर्ड अहलकारनि में डिप्टी जेल सुप्रिटेंडेंट आसिफ खोराई, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट महदी रज़ा वसाण, पुलिस कॉन्स्टेबल ख़ालिद रुक, आज़म जुणे जो ऐं मोहम्मद अली चन्ना शामिल आहिनि। जॾहिं बरतरफ़ अहलकारनि में ASI अतहर मलण, पुलिस कॉन्स्टेबल कमालद्दीन चाचड़, सुधीर मलण ऐं ईमान अली मेतलो शामिल आहिनि। जेल सुप्रिटेंडेंट ज़ुल्फ़िकार आगा, पुलिस कॉन्स्टेबल वहीद ख़ासकेली ऐं भीषम ख़ासकेली जी 5-5 सालनि जी इंक्रीमेंट ख़तमु कई वई आहे। गुज़िरियल साल 9 मई ते सिक्योरिटी 4 मां कचो क़ैदी अमजद कोराई जेल जी भितटपी फरार थी वियो हो। गुड्स ट्रांसपोर्टरनि जी हड़ताल 8 ॾींहं में दाखिल। अॼु गवर्नर हाउस में हुकूमत ऐं ट्रांसपोर्टरनि विच में अहम ॻाल्हियूं थींदियूं। उन रसमी आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इतिहाद जे सदर मलक शहज़ाद अवाण चयो आहे त मुल्क में गुड्स ट्रांसपोर्टरनि जे पुरमन मुल्कगीर हड़ताल जे ख़ात्मे जे लाइ अॼु गवर्नर हाउस कराची में वफ़ाक, पंजाब ऐं सिंध हुकूमतुनि जे नुमाइंदनि सां अहम ॻाल्हियूं थींदियूं। वफ़ाक़ी वज़ीर अब्दुल अलीम ख़ान ऐं पंजाब जे सूबाई वज़ीर बिलाल अकबर ॻाल्हियुनि लाइ कराचीअ पहुचंदा। पंहिंजे वीडियो बयान में हुन चयो त गुड्स ट्रांसपोर्टरनि जे पुरमन मुल्कगीर हड़ताल खे 8 ॾींहं गुज़री चुका आहिनि। मुल्क जा ट्रांसपोर्टर पंहिंजे मुतालबनि जी मनता जे लाइ एहतजाज ते आहिनि। हड़ताल सबबि मुल्क अंदरि माल बरदार ट्रांसपोर्टर जी सरगर्मियुनि ते असरु पइजी रहियो आहे। हुन चयो त उमेद आहे त अॼु हुकूमत ऐं ट्रांसपोर्टरनि विच में थींदड़ ॻाल्हियुनि ज़रिए मसइलनि जो हल निकिरंदो ऐं मुल्क में बंदि पियल ट्रांसपोर्ट जो फीथो ॿीहर हलणु शुरू थी वेंदो। हुन चयो त ट्रांसपोर्टरनि जा मुतालबा तस्लीम थियण ताईं पुरमन मुल्कगीर हड़ताल ख़तमु न कई वेंदी। उन ट्रांसपोर्टरनि खे अपील कई आहे त एहतजाज दौरान पुरमन रहनि ऐं सब्र खां कमु वठनि। होॾां गाॾियुनि जी अच वञ बंदि थियण सबबि किरोड़े रुपियनि जो सामान जी रसद मुतासिर थी वई आहे। हड़ताल जा आम वाइपे जी शयुनि जे अघनि ते बि असर पवण लॻा आहिनि। कराचीअ में कणक 2 खां 2.5 रुपया फी किलो महांगी थियण जो ख़दशो। भाॼियुनि ऐं मेवनि सूदो ॿियनि शयुनि जी रसद मुतासिर थियण जे नतीजे में अघु वधण जो पिणु ख़तरो वधी वियो आहे।

ऐं पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। सिंध जे तालीम खाते तरफ़ां तालीमी इदारनि जे औकात कार में तब्दीली, मोकल जो वक़्तु 2:30 वॻे मुक़रर करणु ऐं छंछर जी मोकल बाबति कयल फ़ैसिलनि ते मुख़्तलिफ़ सवाल उभिरी रहिया आहिनि। इंतिज़ामी तौर ते हीउ फ़ैसिलो सादो नज़र अचे थो, पर उन जा सिधा असर शागिर्दनि, उस्तादनि ऐं वालदेन ते पवंदा। तालीमी पॉलिसी ठाहिण वक़्तु सभ खां अहम ॻाल्हि ज़मीनी हक़ीक़त

0: ॿारनि जी उमिरि, सिहत, ज़हनी कैफ़ियत ऐं सिखिया जी सलाहियत खे बि तालीमी पॉलिसीअ जो हिसो बनाइण घुरिजे। हिकु ॿियो उहो सवाल मुशावरत जो आहे। स्कूलनि जी औकात में तब्दीली जहिड़ा फ़ैसिला करण खां अॻु उस्ताद तनज़ीमुनि, वालदेन, तालीमी माहिरनि ऐं स्कूलनि समय सां मुशावरत कई वञे त अमली मसला अॻु ई साम्हूं अची सघनि था। पॉलिसी जॾहिं सिर्फ़ु आफ़िसुनि में वेही तयारु कई वञे ऐं स्कूलनि जे हक़ीक़ी सूरत हाल खे नज़रअंदाज़ कयो वञे त उन जा नतीजा मसलनि जी सूरत हाल में ज़ाहिर थियण जो इम्कान वधी वञे थो। तालीम खाते जे लाइ ज़रूरी आहे त वक़्तु वधाइण या औकातकार तब्दील करण खां अॻु स्कूलनि जी बुनियादी सहूलियतुनि जो जाइज़ो वठे। जिन इदारनि में पाणी, बिजली, वॉशरूम्स, फर्नीचर ऐं महफ़ूज़ तालीमी माहौल मौजूदु नाहे, उते पहिरियां उहे सहूलियतूं फराहम करणु घुरिजनि। बहितर तालीम जो मयार सिर्फ़ स्कूल में गुज़ारियल कलाकनि सां न पर बहितर माहौल, मयारी तदरीस, बुनियादी सहूलियतुनि ऐं मुयसर इंतज़ाम सां हासिलु थींदो आहे। तंहिं करे तालीम खाते खे पंहिंजे नई औकातकार वारे फ़ैसिले ते ॿीहर गौर करणु, लाॻापियल धुरियुनि सां मुशावरत करणु ऐं ज़मीनी हक़ीक़तुनि खे साम्हूं रखे पॉलिसी जोड़णु घुरिजे। ॿारनि खे वधीक वक़्तु स्कूल में रखण खां अॻु खेनि सिखण जे लाइ मुनासिब माहौल फराहम करण ई तालीम जी हक़ीक़ी बहितरी तरफ़ क़दमु हूंदो। हिन वक़्त ताईं जो सिंध राउंडअप, ॿिए आचर जे सिंध राउंडअप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।
1: पंहिंजो शहर, पंहिंजो घर, सकरंट ऐं सकरंट जो आवाज़
2: GFM 90.8।